0: आजा करण, हो गया रिकॉर्ड।
1: Easy Web Radio Thüringen. Wir lieben richtig.